0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं रविशंकर शर्मा जी के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की गीत रचना। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन, प्रस्तुति भक्ति सुधा।
1: दैनंदिन आध्यात्मिक आराधना तसच विविध पोथी पारायणे यांचा नित्य लाभ घेण्यासाठी भक्ति सुधा यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करा।

विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948, आज सोमवार, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, अर्थात 1 जून 2026।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं रविशंकर शर्मा जी के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की गीत रचना। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन, प्रस्तुति भक्ति सुधा।
1: दैनंदिन आध्यात्मिक आराधना तसेच विविध पोथी पारायणे यांचा नित्य लाभ घेण्यासाठी भक्ति सुधा यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करा।